0: نوديها اكم ميجاهاتس تبقى هي فعلا.
1: ए मावेस सुट्टा लाफिंग
2: आहार में सुट्टा लाफिंग
3: ए लिस्ट को मावेस ही मना ला
4: अमिल्ल फैसा आंदा गें अमिल्ल हाशिंगडा गेल्लुन दिरुमकी किहा मोय कमे ए में मावेस सुट्टा लाफिंग
5: दुम फाई आहार में गे हाथुरे दुम फतु के इस्तेमाल कुरुम गे साबुन दिमावा सिही मसल तोगा आहार को हम मिलियन वुरे किना मीहु मरवा कमा तफास हिसाब तकुन दक्का फस नुजेही अवह दुम्फतु के इस्तियो माल कुरूं हुट्टा लमा हिंगा।
6: दिवे ही एफ्फेम, नुआ दिया एके मेगाहर्ट्स।
7: मी अहमद आमिर,

0: नुआ दी है के मेगाहर्ट्स दिवे ही एफएम मैं दुरो नमा दो वागो तु
1: अल्लाहु अकबर अल्लाह

0: ए मावे सुट्टा लैफिंग
1: अहरम सुट्टा लैफिंग
2: ए लिस्ट को मावे सीमाना ला
3: अमिल्ल फैसा आंदागें अमिल्ल हशिंगडा गेल्लुन दिरुमकी किहा मोय कमे एम मावे सुट्टा लैफिंग
4: दुम फाई अहरमेंगे हतुरे दुम फतु के इस्तेमाल कुरुम के साबुन दिमावा सिही मसल तोगा आहार को हम मिलियन बुरे किना मीहु मरुआ कमा ताफास हिसाब तकुन दक्का फस नुजे ही अवह दुम फतु के इस्तेमाल कुरुं हुट्टा लमाहिंगा
5: नोदी है के मेगाहर्ट्स दिवे ही एफएम हबदुस एम मेगाहर्ट्स
6: Me, Hussein Wahid in

0: दुआ को सारे गीतों को जैसा रो वादा नंत
1: नो
0: प्रॉमिस
1: प्रॉमिस
2: एमी हुम था अबद एकु गवम बाउदवी

0: Azuang, emme kamugus keng hova foi filma gule go tumi zume wah ke dakka laani. Ego tong azu mi hovi kom filme ke azu?
1: Bajrangi Baijaan.
0: Bajrangi Baijaan. Kopa mi gaslo azu emme khasa kamaki filmga.
1: Then mi story vara riti kuda kujja ku geldi gen ena ena ge mammeya gulu a den vegen kura masekketta fenigen dahti aswara balala hiwa filme mi.
2: मुन्नी तू बोल नहीं सकती। अच्छा एक काम करते हैं कि शहरों के नाम लेते हैं और अगर तेरा घर वहां पर हुआ तो तू हाथ उठा लेना। मेरठ, फरीदाबाद, ग्वालियर, झांसी, पटियाला, अमृतसर, जोधपुर, जयपुर, श्रीनगर। हम हैं पवन कुमार चतुर्वेदी, पर प्रेम से सब बजरंगी बुलाते हैं। जय श्री राम। बहन जी,
3: बहन जी
4: क्या है? मेरा नाम बेंजी नहीं, रसिका है।
5: और भी तो लोग रहे होंगे भाकरू क्षेत्र में, वो क्यों नहीं ले गए इसे अपने घर?
4: मुरादाबाद,
2: झुमरी तलैया,
4: आसनसोल,
6: पाकिस्तान।
5: इसे अपने देश वापस भेजने का प्रबंध करो तुरंत।
7: चले हटे, आप बिना पासपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता।
2: अरे कैसे नहीं हो सकता कुछ, हम कह रहे हैं पाकिस्तानी, घर भेजिए इसे।
8: सिक्योरिटी,
9: हम पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं बनाते, लोग यहाँ अमेरिका का पासपोर्ट बनवाना, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान का।
2: अरे अगर मुन्नी पाकिस्तान की है तो जर्मनी जाके क्या करेगी?
10: सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना, संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल पीरा।
11: हिंदुस्तानी जासूस को कड़ी सिक्योरिटी में रखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि उसको यहाँ से सीधा इस्लामाबाद शिफ्ट किया जाएगा। तू किधर शिफ्ट हो रहा है यार, वो देखो।
12: जनाब बिल्कुल मेंटल है ये।
2: जय श्री राम। पास पासपोर्ट नहीं है ना वीजा, लेकिन वादा करते हैं कि अब तो हम मुन्नी को खुद उसके घर छोड़कर ही आएंगे।
13: ऐसे हैं भैया बजरंगी, ऐसे हैं भैया बजरंगी।
0: कितना पार वाले आप में हैं?
1: वालाले भी चमिहार तीन वारा का फहर।
0: देख कम में फहर किस बालारों का हम ऐशाओगेरी कमाए की गत बेदे नहीं निकला। वागे कम में को तेरे से फहर बेदे महंगी फताऊं ना आने। ये मकीने वाले मी हैं दिन बालारों के समय हाँ इंटरेस्ट हो रहे था।
1: हो रहे हम रोवे में स्रोवे हम।
0: पूरी हाथ ने हम रो एक कुरी में से मरोन मंजर तो किधर फहर बाला
1: हम रोवे रोवे।
0: हाँ कब अमी गे में खास मंजर की।
1: इमे फाहुतां कोलो इमे हास सही। कुछ मम्मा कह रहे दुएला फदा तंकोल वरा रीति तंकोलेंगे
0: वरा हिता कुड़ला सरोगा दें कुड़ा कुछ जगह स्लोलें जावे सही प्लस पॉइंट एक करने वरा गिना बेगे हिता कुड़ला ने एक खंतंगे हम गया मिस दो आजू बजरंगी भाई जान मिजुस बेली रुक दें तिबन हैं हम आधे रोवे काल तंदं कुड़वारा बोड़ा वे सिंगे आज वह हम एम में फाहूं बजरंगी भाई जान बेली खुन दो हाँ को
1: मीडिया माहो बेलों करने गए फहारो टीवी इन देख के रोगा।
0: हाँ हाँ हाँ ऐ भी महान्दा हुन्ना तो मिजो मेरी हमारा बड़ा मंजर तक का ऐसे सवाल था यार को लाफ ऐ भी मंजर तक का ऐसे इन सवाल को लाफ या मुंगा जो की हाँ फर्द का मकाय को जवाब देविदान है ही वे
1: दें बालाला नहीं दो वाले सवाल फशामा
0: सवाल फशार नहीं मैं फ्रोटम फिल्म गलवत्ता वितरे लाओ एक अफ़ाहो

0: चल बेटा सेल्फी ले ले रे दो अलावा ओके वारा बराबर देंग इस वाल की कोड़ कुछ जाए मीट खा ही तो उन्होंने माय मो रेस्टोरेंट टेक खा फाहुंगे इंदे दो ऐतनो गाने लावे की कोबा
1: कुलुकु किया लावे
0: आ वारा रंगल मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी

0: नहीं सकती।
1: अच्छा एक काम करते हैं कि शहरों के नाम लेते हैं, और अगर तेरा घर वहां पर हुआ तो तू हाथ उठा लेना। मेरठ, फरीदाबाद, ग्वालियर, झांसी, पटियाला, अमृतसर, जोधपुर, जयपुर, श्रीनगर। हम हैं पवन कुमार चतुर्वेदी, पर प्रेम से सब बजरंगी बुलाते हैं। जय श्री राम। बहन जी,
2: बहन जी
3: क्या है? मेरा नाम बहन जी नहीं, रसिका है।
4: और भी तो लोग रहे होंगे भागपुर क्षेत्र में, वो क्यों नहीं ले गए इसे अपने घर?
3: मुरादाबाद,
1: झुमरी तलैया,
3: आसनसोल,
5: पाकिस्तान।
4: इसे अपने देश वापस भेजने का प्रबंध करो तुरंत।
6: चलिए हटिए, आप बिना पासपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता।
1: अरे कैसे नहीं हो सकता कुछ, हम कह रहे हैं पाकिस्तानी, घर भेजिए इसे।
7: सिक्योरिटी,
8: हम पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं बनाते, लोग यहाँ अमेरिका का पासपोर्ट बनवाने, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान का।
1: अरे अगर मुन्नी पाकिस्तान की है तो जर्मनी जाके क्या करेगी?
9: सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना, संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल पीरा।
10: हिंदुस्तानी जासूस को कड़ी सिक्योरिटी में रखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि उसको यहाँ से सीधा इस्लामाबाद शिफ्ट किया जाएगा। तू किधर शिफ्ट हो रहा है यार, वो देखो।
11: जनाब बिल्कुल मेंटल है ये।
1: जय श्री राम। हमारे पास पासपोर्ट नहीं है ना वीजा, लेकिन वादा करते हैं कि अब तो हम मुन्नी को खुद उसके घर छोड़कर ही आएंगे।
12: ऐसे हैं भैया बजरंगी, ऐसे हैं भैया बजरंगी।
13: मूवी मोड, मूवी मूड, मूवी मूड।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: दिव्य FM 90.1 MHz।